0: marketplace.com/shows/joyjam.
1: Marketplace Global Update tells you everything you need to know about the day's top business stories and trends.
2: We're going to see a gradual escalation of the strike.
3: One of the biggest challenges facing renewable energy.
1: Untangling the complex issues to discover their impact on all of us.
4: In a nutshell, can you just explain to people around the world what the essence of the row is?
1: Marketplace Global Update from the BBC.
5: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on NPR.
6: Namaskar, kia ora, pamastan no. Main hu aapki host and dost Ankita Sharma. Aur aap sun rahe hain NPR par sabse zabardast aur aapka apna The Indian Show. और दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी चीज के बारे में जो हफ्ते में कम से कम 7 या 8 बार हमारे दिमाग में आती ही आती है जिसे हम कहते हैं why me यानी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है याद है जब सुबह-सुबह हम लोग 5 बजे उठकर जॉब के लिए लेट हो रहे होते हैं और अचानक से बोलते हैं कि मम्मी हमारे लिए चाय जल्दी बना देना और तब हमें याद आता है कि माँ तो हम इंडिया में ही छोड़ आए हैं यहाँ तो सिर्फ है हमारी तन्हाई तो जल्दी जल्दी तैयार होकर हमें चाय बनानी पड़ती है अपने लिए नाश्ता तैयार करना पड़ता है और इन सभी कशमाकश में एक चीज जो हमारे दिमाग में आती है और हमारे दिल से निकलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों मैंने ऐसे क्या कर्म करे थे वेल दोस्तों आज इसी क्यों पर वाई मी पर पोस्टमार्टम करेंगे और बने रहिए हमारे साथ तब तक सुनिए एक ऐसा गाना जो कि मेरे दिल के वाकई में बहुत करीब है

जो है समा फिर कल हूं या ना हूं। बचपन से ही हमें एक चीज तो सिखाई गई है, जब भी एग्जाम होता था और हमारा दिल नहीं करता था वो एग्जाम करने का, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा वो एग्जाम जल्दी से पास कर लो, फिर तो मजे ही मजे। बोर्ड का एग्जाम दिया तब भी हमें यही किया बोला गया कि ये कर लो, फिर तो मजे ही मजे। उसके बाद आई ट्वेल्थ, फिर आई ग्रेजुएशन और डिग्री, और हमें इसी दौड़ में हम भागते रहे कि बस ये कर लो, उसके बाद तो मजे ही मजे। दोस्तों, मजे वाली कोई चीज वो होती है जब आप उस समय को, उस टाइम को जीते हैं, और वही एक एनआरआई की लाइफ है। हम लोग मजे के लिए हम भागते रहते हैं, पर मजा वो है जो हम प्रेजेंटली जिस समय को हम जी रहे हैं। याद कीजिए जब हम वीजा का फाइल कर रहे थे या फिर हम पीटी दे रहे थे, तब भी हमें ये कहा गया था कि एक बार वहां पहुंच जाओगे तो मजे ही मजे। लेकिन असली मजा किस में है? उस समय को जीने में है, उन चुनौतियों के साथ जीने में है जिससे आपको एक नया स्किल मिलता है। मैं कहती हूं कि एनआरआई होना एक आर्ट ही है, क्योंकि इंडिया में जब भी थे हम, तो हम यही फील करते थे कि वहां जाएंगे, वहां की अच्छी लाइफ होगी। लेकिन जब यहां आते हैं तो चीजें बदल जी जाती। चुनौतियों का सामना हम सभी को जीवन में करना पड़ता है, भले ही हम भारत में हो या हम न्यूजीलैंड में हो। हर चीज बड़ी ही डिफरेंट होती है। अब जैसे कल की ही बात लीजिए, मैं पामस्टर नॉर्थ की जो बारिशें हैं उसको एंजॉय कर रही थी, और सडनली मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अरे आज तो थर्सडे है और आज तो मुझे कूड़े का डब्बा बाहर रखना होता है। तो मैंने बिन उठाया और अपने दिन की शुरुआत करी। बिन उठा के दिन की शुरुआत इस तरीके से करी कि मैं उसे घसीटते हुए ले गई और बाहर रखा। पर आपको पता है कि मेरा अटायर कैसा था? मैंने नीचे पजामा डाल रखा था और ऊपर रेनकोट। ये है एनआरआई की जिंदगी, कि हर चीज को हमें खुद करना होता है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे कोई नोन थे, उन्होंने बताया कि प्लम्बर जो है इतने पैसे मांग रहा है। तो उन्होंने प्लम्बर के लिए क्या किया, उन्होंने अपने जो एकेडमी है, जो फ्री एकेडमी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं, यानी हमारा प्यारा यूट्यूब, उसमें से देखा कि जो नल है उसको चेंज कैसे करें, और उसे वो खुद ही चेंज करने लग गए। यही है खूबसूरती एनआरआई की, कि जब कोई चुनौती आती है तभी हम एक नया स्किल लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जब भी अगर सोचें कि यार क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो याद रखिए कि जब भी कोई भी आपका एग्जाम होगा उसके बाद आपको एक नया स्किल मिलेगा, और वही स्किल आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। तभी तो खुशी खुशी बोल देते हैं कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने ये किया ही हुआ है। और वो कैसे? वो मजे तभी आप लुटा सकते हैं जब आप अपनी चुनौतियों में अपना रास्ता खुद बनाए। This is a life of being.

बातें कुछ अनकही सी होने लगी. और बातें कुछ अनकही सी कुछ ऐसी भी होती हैं जब हम न्यूजीलैंड में होते हैं और इंडिया से हमारे दोस्तों के हमारे रिश्तेदारों की बातें जो हम सुनकर हैरान हो जाते हैं. बहुत अजीब अजीब सी बातें आपको सुनने मिलती हैं. एक तो बात वही कि यार मज़े हैं तेरे, न्यूजीलैंड में रह रहा है, साफ जगह पे रह रहा है और डॉलर कमा रहा है. बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल ही सही बात है. लेकिन सेकंड चीज़ जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्या बोल रहा है. कहते हैं कि न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो तुम लोग तो सबके सब गोरे हो गए होगे. भाई इनको अब कौन समझाए कि यहाँ धूप इतनी तेज़ है कि गोरे होने की बजाय हम लोग तंदूरी चिकन बन जाते हैं. जी हाँ दोस्तों, यहाँ ओजोन लेयर जो है वो इतनी ज़्यादा कम

है कि जिसकी वजह से जो धूप है हमें बहुत ज्यादा तीखी लगती है, और मैं कहूंगी कि 15 या 20 मिनट में अगर आप धूप में रहें तो आपको वो स्कार्स, वो जो निशान होते हैं टैनिंग के, वो आपको नॉर्मली दिख जाते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके हमें सोचना पड़ता है बाहर निकलने से पहले, सनस्क्रीन लगानी पड़ती है। तो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए, मेरे उन सभी रिश्तेदारों के लिए जो मुझे कहते हैं कि न्यूजीलैंड जाके तो तू गोरी हो गई होगी, उसके लिए यही संदेश कि गोरी तो नहीं, लेकिन हाँ, चिकन तंदूरी वाली फील कभी कभी आती है जब हम शीशे में खुद को देखते हैं। और दूसरी बात ये कि बेटा कब सेटल हो गए, अब तो लाइफ में तुम्हारे मजे ही होंगे। हम सेटल होना हो, बट अगर आप रह रहे हैं यहाँ, तो सबसे पहले जो आपको सेटल करना पड़ता है वो होती है यहाँ की घास। जी हाँ दोस्तों, जब हम एक घर में रहते हैं, हमारे आसपास एक पूरा एक एरिया होता है जहाँ पे घास होती है, और उस घास को 15 से 20 दिन में मोविंग करना पड़ता है, जिसके लिए या तो आप खुद करें या फिर आप बाहर पैसे दें। तो अपने सेटलमेंट का पता ही नहीं है, क्योंकि हमें पहले घास जो है उसको सेटल करना पड़ता है। यही है खूबसूरती NRI बनने की, कि आपको अपने छोटे छोटे काम जो है वो खुद करने पड़ते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे कामों में जो हुनर जो आपके हाथों में आता है वो काबिले तारीफ है। आपको सेल्फ मेड इंसान अगर बनाता है तो आपको NRI जरूर बनना चाहिए। इतना आप अपने घर से, अपनी भारत में रहकर वहां से नहीं सीखते जितना आप बाहर आके सीखते हैं, क्योंकि सही मायने में अभी तक मैं अपना अगर एक्सपीरियंस देखूं तो यहाँ का कल्चर इतना डिफरेंट है, और डिफरेंट कल्चर में सब जो है यूनाइट होकर साथ रहते हैं, यही खूबसूरती है। कोई रेसिज्म नहीं है, बहुत प्यार से सब एक दूसरे से मिलते हैं, और सभी लोगों को पता है कि भारत में लोग दिवाली बनाते हैं, भारत में लोग होली बनाते हैं। मैं बात कर रही हूँ पामिस्टन नॉर्थ से, तो हम पामी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर पे इस तरीके के इवेंट्स हमेशा होते रहते हैं, जिसमें हम अपने भारतीय होने के बावजूद भी और भी जो हमारे दोस्त हैं जो दूसरे कल्चर से हैं वो यहाँ आकर हमारे साथ हमारे त्योहारों को मनाते हैं। ये खूबसूरती है और यही प्यार है जो हम यहाँ आकर लेते हैं। तो कभी भी अगर ये सोचे कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो याद रखिएगा कि ये जो वाई मी है, इसने बहुत सारी ऐसी खूबसूरत यादें, खूबसूरत दोस्त आपको दिए हैं जो भारत में रहकर आपको शायद नहीं मिलते। तो चलिए दोस्तों, अब तो हुई हमारे रोने धोने की बात, कि हमें यहाँ पे ग्रास काटनी पड़ती है, हमें यहाँ पे बर्तन मांजने पड़ते हैं, अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, कोई भी आप मेड रखने के हिसाब से नहीं कर सकते काम, बस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव होती हैं। और उन्हीं सब चीज़ों की कश्माकश में आप जब घुसते हैं तो आप बोलते हैं वाई मी, मैं ही क्यों। तो अब वाई मी को ट्राई मी में बदलने का सुनहरा अवसर आ चुका है। आज हम अभी छोटी छोटी उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे आप वाई मी को ट्राई मी में कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, जब बारिश में यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है और आप छाता लेकर जाते हैं, छाता लेकर आप गए, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, मैं छाता लेकर गई तो सामने एकदम तेज हवा आई और छाता उल्टा हो गया। तब मैंने खुद से पूछा वाई मी, बट अचानक से मेरे दिल में आया ट्राई मी, यानी ठीक है, छाता मेरा खुल गया है, अब मैं भीग कर तो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं उन चुनौतियों को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करती हूं और मैं ऐसे ही अपने काम पे जाऊंगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वाई मी शिफ्टिंग टू ट्राई मी। और अब इसी के साथ दूसरा गाना जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और बहुत ही अच्छा गाना है, हर बार मैं कहती हूँ कि ये गाना जो है ये आपको उठकर एक साथ गाना चाहिए, क्योंकि ये गाना जो है ना मेरे दिल के करीब भी है और मोटिवेशनल भी है। चलिए सुनते हैं।

0: Community Notices on NPR.
1: Manawatū Home Budgeting Service is an organisation dedicated to the provision of free, supportive, confidential and culturally aware budgeting and financial capability services to suit an individual client's circumstances. You can have a face-to-face meeting at the office at Hancock Community House or a telephone consultation. For more information, call 06 358 2279.
0: Community Notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at npr.nz or call 06 357 9340.
2: Good day, everyone. I'm John Thornley, presenter of the Wesley Broadway Show, church news, talking with guests, and a variety of music, especially songs by New Zealanders and popular music that expresses a spirituality for Aotearoa New Zealand.
0: The Wesley Methodist Half Hour on Manawatū People's Radio, Tuesdays and Saturdays at 11 a.m.
3: Well, if sports is your thing, then tune on in to the Manawatū's People Radio for the fortnightly sports show with producer Aaron and Brian. What do we normally get up to, Brian?
4: We usually talk about the Manawatū rugby draws and results, and like the central football and the Manawatū netball.
0: The Sports Guide on Manawatū People's Radio. Fridays at 3 p.m, Sundays at 12:30.
5: A window on the world.
6: A military coup appears to be underway in Myanmar.
5: From BBC News.
7: The United States has officially rejoined the Paris Climate Agreement.
5: Essential information on key international stories.
8: The WikiLeaks founder has resisted extradition.
5: Detail on events at home and beyond.
9: The Ugandan authorities have begun to restore internet services after they were switched off.
5: News from the BBC.
0: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on NPR.
10: मितवा तुझको क्या डर है अपनी ही धरती है और अपना ही अंबर है और हर परीक्षा को हर चुनौतियों को सिर्फ इस तरीके से जिए कि हम उसमें आगे बढ़ सकें अपने जीवन को अच्छा चला सकें तो वाई मी और ट्राई मी के इस संघर्ष के साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों ये तो सच है कि एनआरआई की जो लाइफ है वो वाकई में इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस है आप देखते हैं कि अरे वाह ये तो डॉल्फिन के साथ फोटो खिंचवा रहा है अरे वाह वहाँ पहाड़ कितने सुंदर हैं और सही मायने में देखा जाए तो अभी तो हालात ऐसे हैं कि भारत में स्पेशली दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आप सामने आसमान को देख नहीं सकते बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है वहीं जब आप न्यूजीलैंड में अपने दोस्त की फ़ोटो देखते हैं तो उसकी फ़ोटो से ज़्यादा आप जूम करके आसमान देखते हैं कि ओ माय गॉड आसमान कितना ज़्यादा साफ है और फिर आप अपने खुद के सपने बुनने लगते हैं कि चलो हम भी चलते हैं न्यूजीलैंड या हम भी चलते हैं किसी ऐसी कंट्री में जहाँ जो है हमें ये सभी खुशियाँ मिल सके बट इसमें एक मज़ेदार बात क्या है इसमें मज़ेदार बात यह है कि हमारी जीवन जो है जितना ज़्यादा आपको ग्लैमरस लगता है उतना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन चुनौतीपूर्ण के साथ मैं एक शब्द और मचाना चाहूँगी वो है सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है सोचिए कि आप जो इंसान इंडिया में खुद अपने हाथ में एक गिलास जो है वो पकड़ ना सकता हो वो यहाँ YouTube से देखकर नई नई चीज़ें सीखता है और उसका एक्सपेरिमेंट

करता है। तो ये खूबसूरती है एनआरआईज की, जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ मिलकर, दोनों मियां बीवी एक साथ मिलकर अपने जीवन को अच्छा भी बनाते हैं और साथ मिलकर सभी काम करते हैं, चाहे वो ग्रास कटिंग ही क्यों ना हो। वेल, अभी कुछ टाइम पहले मेरे दोस्त का जब मुझे कॉल आया और उसने मुझे बोला ना कि तू तो डॉलर में कमा रहा है, तेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, और मुझे पता है कि ये चीज़ हम सभी के साथ होती होगी, हमारे जो भारत में या और किसी जगह पे जो भी दोस्त है, जब वो हमारी ज़िंदगी सोशल मीडिया में देखते होंगे तो वो ये कहते होंगे कि वाह यार, तेरी ज़िंदगी तो बड़ी ज़बरदस्त है, तू डॉलर में कमा रहा है। लेकिन उनको क्या पता, मेरे सभी भाई बहन जो यहाँ पर पामस्टर नॉर्थ में हैं और न्यूजीलैंड में हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो वाकई में दिल में ये सोचते होंगे कि उनको क्या पता कि भले ही हम डॉलर में कमा रहे हैं, लेकिन जा भी तो डॉलर में रहा है। भाई, जो टमाटर इंडिया में आपको बहुत सस्ते आपको इंडिया में मिल सकते हैं, वो यहाँ हम 200 रुपये किलो में ले रहे हैं। तो जितने हम कमा रहे हैं वैसा ही खर्चा भी है, क्योंकि हम इंडिया में आके तो टमाटर ले जा सकते नहीं हैं। स्पेशली न्यूजीलैंड और इंडिया का अगर फासला देखा जाए तो वो बहुत ही लंबा है। तो यही असली संघर्ष है, यही हमारी असली कहानी है, क्योंकि ये कहानी जो है ये हमें बताती है कि हमें जीवन को कैसे जीना है। वैसे ट्राई मी में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है दोस्तों? दो चीज़ें हैं। ट्राई मी में सबसे पहले जो आपकी ज़िंदगी के चैलेंजेस होते हैं, आपकी चुनौतियां होती हैं, उनको आप इनवाइट करते हैं, उनको आप निमंत्रण देते हैं, उसको आप कहते हैं कि आजा, कोई परेशानी नहीं, मैं तेरे सामने हूँ, चल देखते हैं कौन जीतता है, तू या मैं। तो आप अपनी सभी चुनौतियों में अगर आगे ऐसे बढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि उसको आप एक कंपटीशन की तरह देखने लगेंगे, और जब हम लोग कंपटीशन की तरह किसी चीज़ को देखने लगते हैं तो उसको जीतने के लिए हम पूरा जोर लगा देते हैं। जब उसे पूरा जोर लगाते हैं तो डिफरेंट मेथड जो हैं हम उसमें वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें समझ आता है कि ये डिफरेंट मेथड ही जो है हमें इस कॉम्पिटिशन में जिता सकती है, और उससे ही आपका एक ऐसा क्लियर मेथड आपके हाथों में आता है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो चुनौतियों को जो है निमंत्रण देना शुरू कीजिए। चाहे न्यूजीलैंड में आपको कुछ भी करना पड़े, आप जीत सकते हैं, उसको पॉजिटिवली लीजिए। सकारात्मक ऊर्जा इंसान के अंदर अगर हो तो वो कुछ भी पा सकता है। दूसरी चीज़, जब आप कोई भी कंपटीशन में जाते हैं, उस चुनौतियों का सामना करते हैं, तो पता है आपको एक सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ क्या मिलती है? आपकी ताकत। मैं हमेशा देखती हूँ, जब भी आप किसी से बात करो और कहो कि आप में क्या ऐसा खास है या आप अपने बारे में डिफाइन करो, तो इंसान वो चीज़ें बोलता है जो ज़मीनी तौर से आप उससे कनेक्ट हुए ही नहीं होते हो। जैसे अभी किसी से मेरी बात चल रही थी और मैंने उन्हें बोला कि तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, तो वो उसको परेशान होकर बोलने लगा कि अरे क्या ही है मेरे में, कुछ नहीं है, जॉब नहीं मिल रही। नहीं, आप सबसे पहले अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें ऐसी चीज़ों से नवाजा है जिस हर इंसान में कुछ ना कुछ खास है, हर इंसान में कुछ ना कुछ स्किल है, बस आपको ज़रूरत है उस स्किल को जानने की। तो जब आप चुनौतियों में होते हो तो आप उस कंपटीशन को जीतने के लिए जब आप काम करते हो तब आप अपनी ताकत को पहचानते हो। हम वे लोग हैं जो अपना देश, अपनी भाषा और अपना कंफर्ट जोन छोड़कर यहाँ आए हैं। अगर हम इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं ना, तो जीवन में आने वाली छोटी मोटी मुश्किलें हमारा क्या ही बिगाड़ेगी। हम अपनी रूट्स अपने देश से ख़त्म कर कर आए हैं। हम अपनी रूट्स के साथ साथ हमारे अपने, जिनके साथ हमने अपना बचपन जिया, अपने अपनी जवानी जी, उन सबको छोड़ कर आए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में क्या ही अलग कर देगी। और यही अगर हम अपने आप से रोज़ सुबह उठ कर बोलें तो आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया चेंज आएगा। दूसरी चीज़ क्या है? जब आप किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे यार, जीवन में बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी मुश्किल है। नहीं,
वो मुश्किल

मुश्किल नहीं है। अपने माइंडसेट को चेंज करना शुरू कीजिए, अपने दृष्टिकोण को चेंज करना शुरू कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी की मुसीबत नहीं आती, जिंदगी में कभी भी किसी की मुश्किलें नहीं आती, उसे अनुभव कहना शुरू कीजिए। क्योंकि वो अनुभव जो आपको जीवन में मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। आपके पास एक नया हुनर ही देकर जाएगा, चाहे वो प्लंबिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, या फिर किसी और की संस्कृति में खुद को ढालने की बात हो। आप खुद देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी डेवलप हो जाएगी। आपको खुद समझ आएगा कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी मत बोलिए कि आप मुसीबत में हो, क्योंकि आप ये समझें कि जो यूनिवर्स है उसमें आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आप मुसीबत में हैं, और वो आपकी छोटी सी मुसीबत, छोटी सी मुश्किल बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए उस मुसीबत को, उस मुश्किलों को अनुभव कहना शुरू कीजिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने अगर अपनी ज़िंदगी में काउंट कर ली तो आपको खुद समझ आएगा कि आपके लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया है। और अल्लाह के बंदे, ये ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, थोड़ा जीने की कोशिश तो कर।

अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी होगा वो फिर आएगा. चलिए अब इसी के साथ अंकिता की जादुई टिप जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है. देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमें पसंद है प्रो. हम कोई भी मोबाइल भी लेते हैं तो भी हम सैमसंग प्रो या अगर उसके साथ प्रो लगा हो, हालांकि वो अपग्रेड हो ना हो डैट डजेंट मैटर, बट स्टिल हमें लगता है कि प्रो है तो कुछ बढ़िया है. तो अब एक ऐसी जादुई टिप जिससे आप अपने जीवन को अच्छा चला सकते हैं और बन सकते हैं प्रो, वो क्या है दोस्तों? दोस्तों आप अपनी जीवन में हमेशा सपने देखते हैं. सपने तभी पूरे होते हैं जब मुश्किलों का आप सामना करने के लिए सक्षम होते हैं. तो जब भी कोई भी मुश्किलें आए और जब भी आप कोई सपना देखें तो उसके प्रोज और कॉन्स पहले ही देख लीजिए और उसको समझ लीजिए कि उसमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं और उन मुश्किलों के लिए क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि वो मुश्किलें मैं हटा सकूँ अपने जीवन से उस सपने को पाने के लिए. तो उस सपने को पूरा करने का अपने स्वयं अगर आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि उससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती. और याद रखिए, जब भी कुछ करने का सोच रहे हैं, मुश्किलें आएंगी, तो मुश्किल से डरना शुरू मत कीजिए. मुश्किल को इस तरीके से समझिए कि उसमें कुछ मजेदार ऐसा छुपा हुआ है जिससे मेरी जीवन बदलने वाली है, जिससे गर्व से मैं लोगों से कह सकता हूं कि सुनो मेरे पास ये स्किल भी है. तो मुश्किलों से डरना मत शुरू कीजिए, बल्कि मुश्किलों को डराना शुरू कीजिए. मुश्किल को कहिए कि देखिए हम यही हैं, देखते हैं क्या होता है, आप जीतते हैं या हम. जीवन में बहुत खटास आती है ना? तो जब भी जीवन में उस मुश्किलों की वजह से खटास आए तो मेरी बात मानिए, अंकिता की जादुई टिप को हमेशा याद रखिएगा कि उस खटास को एक गिलास पानी में डालें और उसके बाद चीनी डालकर उसे शिकंजी की तरह पी जाए. जिंदगी थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन उससे आप भी बन जाएंगे प्रो. और आपको पता है ना, जो नॉर्मल सैमसंग फोन होता है और नॉर्मल और आपका प्रो फोन होता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और उसी की वजह से उसकी कीमत बढ़ती है और वही कीमत आपकी भी बढ़ेगी, आपका भी स्किल बढ़ेगा. तो याद रखें, ट्राई मी जो है एक ऐसा टूल है जिससे आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं. अरे सिंपल सी बात सोचिए, हम इंडियंस हैं और इंडियंस के खून में ही होता है ट्राई मी. सोचो आपको बहुत भूख लग रही हो, आपको कुछ खाने को नहीं मिल रहा हो और आप परेशान हो, तो आपने वो समय भी जो है देखा है कि कुछ भी कैसा तैसा कुछ भी बनाकर आपने खा लिया क्योंकि उस वक्त भूख थी. भूख में इंसान कुछ भी करता है. तो वो भी तो चुनौती थी जो आपने पार कर ली. घर में घड़ी सोचो कड़ी बनती है ना, घर में कड़ी बनी और आपने दही डाली. दही आपको जल्दी पता चली कि दही तो खट्टी ही नहीं है. क्या करोगे आप? उसमें अमचूर डाल दोगे या आप उसमें नींबू डाल दोगे जिससे वो खट्टी हो जाए. मतलब कि प्रॉब्लम आई कि सब कुछ डाला आपने और फिर भी दही खट्टी नहीं बनी. आपने उस चुनौती को जो है सॉल्यूशन में बदला, उसमें नींबू डाल दिया और अमचूर डाल दिया. तो क्या किया आपने? आपके सामने जब प्रॉब्लम आई तो आपने वाई मी नहीं किया, आपने ट्राई मी किया. ट्राई मी तभी हुआ जब आपको भूख लगी थी, जब चाहा थी कि आज तो घर में कड़ी बननी ही है और चाहे जैसे भी बने मैं टेस्टी कड़ी जरूर बना के रहूंगा. तो यही जीवन के साथ है. जीवन में फिर आप क्यों वाई मी करते हो? कम से कम एक बार ट्राई मी मेरे हिसाब से करके तो देखो और तब आपको पता चलेगा कि आपने जो जीवन में पाया वो और कोई नहीं पा सकेगा. लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, बस थोड़ा सा तो आगे बढ़. वाई मी को ट्राई मी कर कर तो देख, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी. और आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, सुबह सुबह उठें और अपने

जो बेड से आप उठते हैं उसके सामने आप एक पेपर लगा दें जिसमें एक जगह लिखा हो वाइट पेपर पर वाई मी और उसे काट कर आप लिखें ट्राई मी और हमेशा उसे चैंट करते रहें, हमेशा बोलते रहें कि ट्राई मी ट्राई मी। आप देखेंगे ये जो चुनौतियां हैं ना, ये जो मुसीबतें हैं ना, वो दुम दबा के भाग जाएंगी। और जब चुनौतियां दुम दबा के भाग जाती हैं तो आपकी जीवन तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही हुआ। दोस्तों ये हमारे सिर्फ एक एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही और एक्सपीरियंसेस अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ आए, आप उसके बारे में सॉल्यूशन ले सके, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल वेल रोमिंग से जुड़ सकते हैं। आप वहाँ मेरे से बातें कर सकते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके के सॉल्यूशंस आपकी लाइफ में उसको बिल्कुल सॉर्ट कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अब आगे हम अगला गाना सुने, उससे पहले आप हर ट्यूसडे शाम 6 बजे सुनना ना भूलिए द इंडियन शो, एक ऐसा शो जो आपका अपना शो है, एक ऐसा शो जो आपको सॉल्यूशन भी देता है, एंटरटेनमेंट भी देता है, आपको आपकी बातें वो बताता है जो वाकई में आप बहुत सालों से अपने अंदर दफना कर बैठे हैं। मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता शर्मा और आप सुन रहे हैं MPR पर आपका ज़बरदस्त शो जो आपको वाकई में बहुत प्यारा है। अगले गाने के साथ हम इस वाई मी और ट्राई मी के सफ़र के का निष्कर्ष करेंगे, उसका कॉन्क्लूजन निकालेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।